0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Monday.

0: किस्सों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: रोहन को हमेशा लगता था कि उसके पापा थोड़े अजीब है। कॉलेज में जब सबके पापा अपने बच्चों को बर्थडे पर गिफ्ट देते थे, रोहन के पापा बस इतना कहते, पढ़ाई पर ध्यान देना। रोहन को गुस्सा आता। एक बार उसने पापा से कहा, पापा आप कभी मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ नहीं बोले। रोहन और गुस्से में अपने रूम में चला गया। उस दिन रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा पापा बालकनी में बैठे थे। हाथ में रोहन की कॉलेज की फीस की रिसिप्ट थी। पापा कैलकुलेटर पर कुछ कैलकुलेट कर रहे थे। रोहन चुपचाप वापस से सो गया। अगले दिन कॉलेज में उसके दोस्त ने बताया कि उसके पापा ने उसकी फीस के लिए लोन लिया है। रोहन को यकीन नहीं हुआ। शाम को घर आकर उसने पापा से पूछा, पापा फीस के लिए लोन लिया है? पापा ने न्यूज़पेपर फोल्ड किया और बस इतना कहा, तू पढ़ाई कर, बाकी चीजों की टेंशन मत ले, तेरा बाप है ना। रोहन कुछ नहीं बोला। साल बीत गए, रोहन की जॉब लग गई और पहली सैलरी आई तो उसने पापा के लिए एक एक्सपेंसिव वॉच खरीदी। गिफ्ट देते वक्त बोला, पापा आपके लिए। पापा ने वॉच देखी और कहा, पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? रोहन हंस पड़ा। पापा आप कभी खुश भी हो जाया करो यार। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस वॉच पहन ली। कुछ महीने बाद रोहन को दूसरे शहर जॉब के लिए जाना था। स्टेशन पर पापा उसे छोड़ने आए थे। ट्रेन आई, रोहन अंदर चढ़ गया। पापा प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे, ट्रेन चलने लगी। रोहन ने विंडो से देखा, पापा कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिला दिया। 2 घंटे बाद रोहन को पापा का मैसेज आया, पहुंचकर फोन कर देना, बस इतना ही। रोहन ने फोन पॉकेट में रखा और पहली बार उसे समझ आया, पापा कभी आई लव यू नहीं बोलते, कभी आई एम प्राउड ऑफ यू भी नहीं बोलते, या कभी आई मिस यू ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलते, लेकिन उनकी हर खामोशी में एक बात छुपी होती है, बेटा तू बस खुश रहे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा ना, क्योंकि तेरा बाप अभी जिंदा है। पापा ने कभी कुछ कहा ही नहीं, पर रोहन को सब समझ आता था। और इस रोहन की जगह मैं और आप, हम सभी लोग हैं, तो ये बात समझिएगा।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: वेलकम बॅक, यू आर लिस्निंग एमजीएम 90.8 FM. आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे. आपल्या सोबत आहेत मानसोपचार आणि व्यसनमुक्ती तज्ञ डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर. और सर के साथ आज हम यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं.
1: और सर, कैसे पता चले कि नॉर्मल स्ट्रेस और सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू में क्या फर्क हो सकता है?
2: देखो, अभी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस देखो, मैं जैसे बताऊँ की स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. वो ऐसा वो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता है और हर किसी के लाइफ में है. किसी को फैमिली रिलेटेड है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को एकेडमिक है, किसी को करियर रिलेटेड या वर्क प्लेस पे ज्यादा स्ट्रेस. बट स्ट्रेस इज योर पार्ट ऑफ लाइफ. वो रहने वाला है, वो लाइफ का पार्ट है, वो हमेशा रहने वाला है. बस उसका जो कंटेंट है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा. जैसे वो कभी आज मुझे करियर रिलेटेड है, मुझे कल पढ़ाई का होगा, परसों फाइनेंशियल रिलेटेड होगा, तीसरा मुझे मेरे रिलेशनशिप के लेकर होगा. ये चीजें चलते रहेगी. सो क्या है कि ये स्ट्रेस होना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस रहा तो वो एक्टिंग फोर्स काम करता है हमारे लिए. अगर स्ट्रेस नहीं रहा है, दूसरे दिन एग्जाम है, अगर मैं आज स्ट्रेस नहीं लू तो मैं पढ़ूंगा नहीं ना, तो इट इज एन एक्टिवेटिंग फोर्स. वो थोड़ा जरूरी होता है. बट स्ट्रेस जब हावी होता है मीन्स आप परसिस्टेंटली वो थॉट आपके दिमाग से नहीं जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप उसी थॉट में रहते हो, और जिसके वजह से आपको बेचैनी होना, हमेशा डिप्रेस या सैड फील होना, या नींद नहीं आना, ये जब चीजें होती है, गुस्सा बढ़ जाना या फिर बिल्कुल शांत हो जाना, ये सब चीजें होने लगती है, तब थोड़ा समझना है कि नाउ स्ट्रेस इज ओवरवेलमिंग. नाउ आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो या फिर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है. सो दिस इज द डिस्टिंगिंग फैक्टर कि लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा जरूरी है, बट वो हावी होता है और ये सब चीजें आती है, तो समझना कि यस नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. हाँ जी,
1: तो कभी कभार स्ट्रेस होना भी जरूरी है.
2: एक लिमिट में.
0: यस. सो ये सब बातें याद रखिएगा किस तरीके से होती है. और तब तक स्टे ट्यून.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: आज हमारे पास में तो गाने की बहुत ही प्यारी फरमाइश आई है। 1971 का ये गाना है, बुड्ढा मिल गया इस फिल्म से, और गाने का नाम है
1: रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
0: है रात कली एक ख्वाब में आई, क्या बात है यार। और ये फरमाइश भेजी हमें अथर्व काले जी ने, और इस गाने को ना तो गाया था अपनी सुरीली आवाज में किशोर कुमार जी ने, और संगीत दिया था पंचम दा जी ने, और इसके लफ्ज लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। तो चलिए फिर यादों के सफर पर ले चलते हैं, ये ख्वाब में आई ये गाना एंजॉय करते हैं। बाय द वे आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हमें पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। इस पर अपनी फरमाइशें बताइए और सुनते रहिए।

0: Event Management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.
4: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-475-44 or visit mgmu.ac.in.
3: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

अक्सर कहते हैं कि एम्बुलेंस कभी वक्त पर नहीं पहुंचती, और ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमारे सामने है। एंड जब एक्सीडेंट होता है तो वक्त पर एम्बुलेंस ना पहुंचने की वजह से तो बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो अब एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को लेकर NHAI ने सख्त रूल लागू किए हैं, जिसको फॉलो करना कंपलसरी हो चुका है हर एम्बुलेंस ड्राइवर को और उस पर काम करने वाले लोगों को। नए रूल्स के हिसाब से क्या है कि अगर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के एरिया में एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी कॉल रिसीव होने के 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस को एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचना कंपलसरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचती तो ऑपरेटर पर 10,000 का फाइन भी लग सकता है, और 10 मिनट के बाद हर एडिशनल मिनट पर 5,000 की पेनल्टी भी उन्हें लग सकती है। मतलब 10 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो 11वें मिनट पर 5,000 एक्स्ट्रा पेनल्टी उन्हें लग सकती है। ऐसे इस रूल्स और रेगुलेशन में लिखा गया है, जो कि नए तरीके से अभी लागू कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस को इंजर्ड पर्सन को कॉल रिसीव होने के 1 घंटे के अंदर नजदीकी हॉस्पिटल तक ले जाना है। इसमें भी अगर डिले हुआ तो 10,000 का फाइन लग सकता है। देखिए, एक्सीडेंट के बाद ना हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी वही एक मिनट किसी की जिंदगी और मौत के बीच का एक डिफरेंस बन सकता है। इसलिए अगर आप गाड़ी हाईवे पर चला रहे हो या फिर किसी नॉर्मल रास्तों पर, स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिएगा। और अगर एक्सीडेंट दिखा तो सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में मत बैठिए, मदद के लिए इमरजेंसी सर्विस को कॉल कीजिए। और ये अभी ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन NHAI ने सभी हाईवे पर जितने एम्बुलेंस है ना, तो उनको लागू किए है, तो इसको भी याद रखिएगा। एंड 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचेगी, यही अभी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाती है खाने की, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में टाइम लगता है। शायद से ऐसे रूल्स और रेगुलेशन से होप्स ये डिफरेंस खत्म हो जाए। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है, गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, आराम से चलाइए, क्योंकि जान है तो जहान है मेरी जान। बाकी तो RJ अदनान के साथ अभी शो बहुत बाकी है, सुनते रहिए। Only on MGM 90.8 FM.

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: क्या आप जानते हो रंग दे बसंती का मतलब क्या होता है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था रंग दे बसंती। इसमें जो लफ्ज है बसंत, बसंत यानी के पीले रंग को कहा जाता है और पीला रंग ये प्रतीक है बलिदान, वीरता और देश प्रेम का। और इसी गीत को भगत सिंह ने भी गाया था। कुछ तो बात है इस रंग में जो कि हर किसी को देशभक्ति के रंग में रंग देता है। वैसे आप जानते हो ये देशभक्ति का रंग कैसे बनता है? और इस रेसिपी में क्या क्या मिलाना पड़ता है ये लाइन सुनिए।
2: थोड़ी सी धोखने वाली दग दग दग दग दग दग सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की।
1: अब आगे क्या करना है?
2: ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले,
1: और इससे जो रंग बनेगा उससे
0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट डब्ल्यू

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

एवरीवन, कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल। इस शो में मैं राजश्री अग्रवाल, डायरेक्टर एंड फाउंडर एट श्री कुकिंग एंड बेकिंग क्लास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि छे स्वीट्स कैसे बना सकते हो। तो स्पेशल जो स्वीट्स है वो आज हम सारी रेसिपीज देखने वाले हैं। तो देखो, उसके अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं ना कि आपको इजी, फटाफट से और आसानी से, जैसे अभी सारे त्यौहार शुरू हो गए हैं तो घर में सारे कामों की गड़बड़ होती है, जल्दी जल्दी करना होता है, और कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। तो हम ऐसे ही रेसिपीज देखेंगे जो आप फटाफट से जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल है उसी से ही आप अच्छी अच्छी रेसिपीज जो है वो फटाफट से बना सको। सबसे पहले हम कोकोनट और मिल्क पाउडर से बनी हुई बर्फी, इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो सबसे पहले बता देती हूँ, फिर हम प्रोसीजर देखेंगे कि आपको बनाना कैसे है। ओके, तो देखो, इंस्टेंट कोकोनट मिल्क पाउडर बर्फी बनाने के लिए हमें एक कप यहाँ पे लगेगा डेसिकेटेड कोकोनट, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल नहीं है तो घर का जो ड्राई कोकोनट होता है, सूखा नारियल, इसे भी आप ग्रेट करके यूज कर सकते हो। जब आप उसे ग्रेट कर रहे हो तो याद रहे कि आपको ग्रेटर जो है, किसने जिसको बोलते हैं, वो आपको बारीक वाला यूज करना है, जिससे एकदम फाइन ऐसे वो ग्रेट हो, ठीक है। इसके बाद में एक कप लगेगा हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जब भी यूज करो तो कोई अच्छे से ब्रांड की लेना है आपको, जो लूज में मिलती है वो आपको नहीं यूज करना है। ओके, तो मिल्क पाउडर भी आपने अच्छे से ब्रांड का ही ले लेना है। इसके बाद में आधा कप लगेगा हमें यहाँ पे चीनी, ठीक है। हाफ कप लगने वाला है आपको यहाँ पे दूध। 2 से 3 टेबलस्पून लेना है आपको यहाँ पे घी। देखो, सबसे पहले 2 टेबलस्पून लेके देखो, अगर लगता है कि मिश्रण कहीं ड्राई हो रहा है फिर आप 1 टेबलस्पून और एक्स्ट्रा से उसमें ऐड कर सकते हो। 1/2 टीस्पून लगेगा हमें यहाँ पे कार्डमम पाउडर, ठीक है, इलायची का बारीक पाउडर जो घर पे किया हुआ हो, उसका फ्लेवर और टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। इसके बाद में चॉप्ड आपको लगेंगे नट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हो। कैशू नट्स ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, अखरोट, जो भी आपके पास में है वो चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। पिस्ता भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये आप ऊपर से जस्ट गार्निशिंग के लिए डालने वाले हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपको पहले सबसे पहले एक प्लेट में निकाल लेना है, ताकि जब आप एक बार रेसिपी शुरू कर लो तो उसके बाद में गड़बड़ी ना हो। ओके, इसके बाद में आपने क्या करना है, गैस पे एक पैन को हीट करने रखना है। पैन जैसे ही हीट हो जाता है, देखो अगर हो सकता है ना तो जो रेगुलर पैन होते हैं हमारे, वो वाले अवॉइड करना है, जो कोटिंग वाले आते हैं, है ना, तो वो वाले आप अगर यूज करते हो तो मिश्रण जो है ज्यादा चिपकेगा नहीं आपके पैन में। तो अगर हो सकता है तो जो कोटिंग वाला पैन है वो अगर आप यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पैन को आपने हीट कर लेना है। इसके बाद में आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी जो है ये आपने ऐड कर देना है, ठीक है। गैस की फ्लेम जो है ये आपको सबसे लोवेस्ट पे रखना है। घी आपको जैसे ही मेल्ट हो जाता है, अभी आपको इसके अंदर मिल्क और चीनी ऐड करना है, ठीक है। दूध ले लेना है आपको 1/2 कप और चीनी लेना है आपको 1/2 कप। ये दोनों भी चीजें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अभी आपको इसे लगातार चलाते रहना है तब तक जब तक कि चीनी जो है ये कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाती है, है ना। चीनी जो है ये पूरी तरह से मिल्क में और घी में घुल जाना चाहिए। तो तब तक आपको इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है। अभी आपको मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर, जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, पूरी तरह से घुल जाती है और दूध को जैसे उबाल आ जाता है, ठीक है, इसके बाद में हमने मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर, जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था या हमारा घर का सूखा नारियल, ये आपको इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। अभी जब आपको इसको ऐड करना है तो सारा के सारा एक साथ आपको इसके अंदर नहीं डाल देना है, ठीक है। 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप ले लेना है आपको डेसिकेटेड
कोकोनट। अभी ये जब डालोगे थोड़ा थोड़ा कर कर आपको ऐड करना है ताकि इसमें लम्स फॉर्म ना हो। इसकी क्या होती है ना, गुठलियाँ बन जाती है फिर मिल्क पाउडर की इसके अंदर, तो इसके लिए मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा ही ऐड कर रहे हो, एक साथ पूरा के पूरा आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप करोगे तो इसके अंदर लम्स होने लगेंगे और बहुत सी बार वो लम्स जल्दी से खुलते भी नहीं है, ठीक है। वो धीरे धीरे से ऐड करते जाओ और दूसरी ओर से कंटिन्यूस स्टरिंग जो है ये ऑन रखना है, कंटिन्यूस आपको चलाते रहना है। याद रहे ऐसे में आपकी गैस की फ्लेम जो है ये सबसे लो पे हो, बिल्कुल भी हाई पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ देर बाद आप चलाओगे ना तो उसके बाद में मिश्रण जो है ये थिकन होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे मिश्रण ठीक होने लगता है और कुछ देर बाद ऐसा आता है कि वो जो साइड से पैन के वो छोड़ देता है, ठीक है। तो मिश्रण जैसे ही आपका ठीक हो जाए और इसने साइड्स छोड़ दिए हैं तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कार्डमम पाउडर जो है वो ऐड करना है और आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो इलायची का पाउडर है इसका फ्लेवर सारे मिश्रण में अच्छी तरह से आ जाए, ओके। अभी आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया, ये मिश्रण को आपको ट्रांसफर करना है एक प्लेट में, लेकिन उससे पहले आपने उस प्लेट को घी लगाकर, जैसे एक टेबलस्पून घी हमने एक्स्ट्रा लिया था, अगर ज़रूरत पड़ती थी तो जब मिश्रण साइड छोड़ रहा था पैन के उस समय आप ऐड कर सकते हो, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हमें घी जो प्लेट है उसको ग्रीस करने के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है। वो प्लेट को अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि जब आप ये मिश्रण उसके अंदर डालो तो वो प्लेट पे चिपके ना, ठीक है। आप ग्लास का प्लेट भी यूज कर सकते हो, याद रहे कि ग्लास जो है वो प्रॉपर से रहे जिसमें गर्म मिश्रण आप डाल सकते हो। अगर वो डालते के साथ अगर तड़क जाती है, इस तरह का कांच आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जो माइक्रोवेव सेफ कांच होती है वो वाला प्लेट आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास ग्लास का प्लेट तो कोई सा भी प्लेट आप यूज कर सकते हो, स्टील वाला ले लीजिए, मिला माइक्रोवेव वो वाला आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से फिर आपको क्या करना है, उस प्लेट को अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है और जो हमने ये मिश्रण अभी बनाया है इसको ये जब गर्म है तभी आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद में आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर दोगे इवनली पूरी प्लेट में। अगर आपके पास में स्क्वायर साइज का प्लेट हो ना तो आप उसमें भी डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप बर्फी गिराओगे ना तो बर्फी गिराते समय आपका ये जो है साइज वो प्रॉपर स्क्वायर में कट होगा, तो अगर आपके पास में स्क्वायर में कुछ अवेलेबल है तो आप उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। इसको डालकर इसके अंदर अच्छे से इसे स्मूथ करना है। स्पैचुला को आप थोड़ा सा घी लगा के उससे प्रेस करके भी आप स्मूथ कर सकते हो। ऊपर का सरफेस जो है टॉप वो पूरा स्मूथ कर देना है आपको। इसके बाद में गर्म ही जब है मिश्रण तभी आपको इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसे हल्के से प्रेस करते जाओ ताकि ड्राई फ्रूट्स जो है ये ऊपर ऊपर ना रहते हुए अंदर तक जाए, क्योंकि जब आप इसकी बर्फी गिराओगे तो आप क्या हो सकता है ना कि ड्राई फ्रूट जो है वो गिर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको प्रेस करते हुए अंदर तक अच्छे से दबा देना है। इसके बाद में आपको इसे आधा से एक घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, ओके। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, नाइफ की सहायता से इसको बर्फी की साइज में आप कट कर लोगे, ओके। स्क्वायर्स में आपको इसे कट कर लेना है और इसके बाद में फिर से आपको थोड़ी देर ठंडा करना है, इसको पूरा कम्प्लीटली कूल हो जाए उसके बाद आप इसे निकाल लोगे, ठीक है। निकाल कर आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख सकते हो या किसी कांच की बर्नी में भरकर, ये 7 से 8 दिन तक रूम टेम्परेचर पर अच्छे से रह सकती है। तो इस तरह से आप कोकोनट और मिल्क पाउडर से बनी हुई बर्फी जो है वो बना सकते हो। कोकोनट और मिल्क पाउडर से बनी हुई बर्फी देखने के बाद में अभी हम देखेंगे बेसन लड्डू, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो।
और बहुत ही टेम्पटिंग और खाते ही मुंह में घुल जाने वाले लड्डूस। तो देखते हैं कि बेसन के लड्डूस जो है वो कैसे बनाने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं इसके लिए ये बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको लगेगा यहाँ पे 2 कप ग्राम फ्लोर, घर का ही बेसन आप लीजिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो चना दाल होती है उसको हमने पिसाया हुआ बेसन। इसके बाद में 1/2 कप लगेगा आपको घी, जरूरत के अनुसार 1 या 2 चम्मच कम या ज्यादा लग सकता है। इसके बाद में 3/4 कप लगेगी हमें यहाँ पे पाउडर चीनी, ठीक है। घर पे ही पिसाई हुई जो रेगुलर चीनी होती है इसे आपने घर पे ही पिसा लेना है, ठीक है। 1/2 टीस्पून लेना है आपको यहाँ पे इलायची का पाउडर, और 1 से 2 टेबलस्पून ले लोगे आप कटे हुए आमंड्स। अगर आपके पास में फ्लेक्स है ना तो आमंड के फ्लेक्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छे लगते हैं। या फिर आप आमंड फ्लेक्स में इसे रोल भी कर सकते हो जब लड्डू बन जाता है, या फिर ऊपर से आप एक आमंड भी लगा सकते हो। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये आपको निकाल लेने हैं सबसे पहले। अभी आपको जो प्रोसीजर है वो बताती हूँ कि आपको इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले एक पैन ले लेना है और घी डालकर इसे पूरी तरह से मेल्ट कर लेना है। देखो, कभी भी जब बेसन का लड्डू बना रहे हो ना, तो जिस भी चीज़ में आप बेसन भून रहे हो, मेक श्योर कि आपका वो पैन जो है वो हैवी बॉटम का रहना चाहिए। हैवी बॉटम में ही क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप बेसन भूनते हो ना तो वो बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो कभी कभी अगर आपका पैन जो है वो अगर पतला है तो बेसन जो है ये लग जाता है, और वो जली हुई स्मेल जो है वो आपके लड्डू में आ सकती है। तो कभी भी हैवी बॉटम वाला पैन ही आपको यूज़ करना है। कोई भी पैन यूज़ कर सकते हो, बस कि वो हैवी बॉटम का रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट है कि पूरी फ्लेम जो है आपकी गैस की ये सबसे लो पे ही आपको रखना है, ठीक है, घी मेल्ट करते समय भी बेसन भूनते समय भी। तो देखो, सबसे पहले हमने एक हैवी बॉटम वाला पैन ले लिया, इसके अंदर हमने घी डाला और इसे हमने मेल्ट कर लिया, ठीक है। अभी हमें इसके अंदर ऐड करना है बेसन, ठीक है। बेसन डालकर इसको आपको कंटिन्यूस भूनना है जब तक कि इसमें से अरोमा, भुना हुआ भूनने के बाद ना जब बेसन भून जाता है ना, बहुत अच्छा सा अरोमा इसके अंदर से आता है, तो वो उसका साइन है कि आपका बेसन जो है वो अच्छे से भून चुका है। देखो, दिवाली के समय भी जब कोई अपने अड़ोसी पड़ोसी भी अगर बेसन का कुछ बना रहे और भून रहे, तो पूरी हमारे बिल्डिंग में जो है वो खुशबू आने लगती है। तो उसी तरह से पूरे घर में इसका अरोमा जो है वो फैल जाता है। तो आप पहचान सकते हो, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है बेसन भुना गया है या नहीं, कि उसका अरोमा जो है वो आने लगता है। देखो, लो फ्लेम पे आपको एक 10 से 12 मिनट लग सकते हैं बेसन अच्छे से भूनने के लिए। अभी हमने ये 2 कप का क्वांटिटी बनाया है, अगर ज़्यादा हो तो टाइमिंग जो है वो कम ज़्यादा लग सकता है, 15 से 20 मिनट भी आपको लग सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, बेसन जब अच्छी तरीके से पूरा भुना जा चुका है, इसके बाद में आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। मिक्सचर जो है ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाता है, ठीक है, और स्मेल जो है वो अरोमेटिक आती है। ये 2 चीज़ें होने के बाद में आप क्या करोगे, गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। अभी मिश्रण को आप एक किसी प्लेट में निकालोगे और इसे कम्प्लीटली कूल डाउन करना है, ठीक है, पूरा ठंडा करना है मिश्रण को। अगर मिश्रण थोड़ा सा भी गर्म रहता है तो होता क्या है ना कि जब आप इसके अंदर चीनी ऐड करोगे तो फिर आपका चीनी जो है वो उसमें मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मिश्रण जो है ये पूरी तरीके से आपको ठंडा कर लेना है। अभी ठंडा भी करोगे तो आपको इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, फ्रिज में वगैरह रखकर नहीं करना है। अगर आपको कभी जल्दी है तो आप फैन के नीचे इसे रख सकते हो ठंडा करने के लिए, ठीक है। फिर भी अगर रूम टेम्परेचर पे होने दो नेचुरली ही उसको कूल डाउन, तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में जब ये कम्प्लीटली कूल हो जाए, आपको पाउडर चीनी जो है आपको इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालते जाओ और एक हाथ से इसे मिक्स करते जाओ, स्पैचुला से भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। इसके बाद में हमें इसके अंदर ऐड करना है कार्डमम पाउडर।
ठीक है। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स दे देना है ताकि हमारे पूरे मिश्रण में ये कार्डमम पाउडर का टेस्ट जो है ये अच्छी तरीके से आए। इसके बाद में हमने जो चॉप नट्स लिए थे या आमंड्स लिए थे वो आपने इसके अंदर डाल देना है। देखो आप सारे ड्राई फ्रूट्स है, इसे आप चॉप करके, फाइनली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर सकते हो, या तो सभी ड्राई फ्रूट्स के फ्लेक्स मिलते हैं मार्केट में तो वो फ्लेक्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो भी आप पसंद करते हो। घर में अगर एजेड पर्सन है कोई जिनको चबाया नहीं जाता है तो अवॉइड कीजिए कि आप उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालो, वो दांतों के नीचे आएंगे, ठीक है, तो वो चुभते हैं। अगर फ्लेक्स डालते हो तो कोई ओल्ड एज भी है वो भी आसानी से उसे खा सकता है, क्योंकि ये लड्डू ऐसे है ना मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालते हो तो जो थोड़े से एजेड है उनको खाने में तकलीफ होती है, तो बेटर वे आप फ्लेक्स यूज करो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, ड्राई फ्रूट का पाउडर करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। बहुत सी बार सिर्फ एक ऐसे होता है कि ड्राई फ्रूट की पाउडर से टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि पाउडर होती है तो वो पूरी तरह इसमें मिल जाती है, तो उसके लिए अवॉइड कीजिए कि पाउडर डालो, फ्लेक्स डालते हो तब भी चलेगा। इसे अच्छे से मिक्स दे देना है। और अभी आपको क्या करना है, इसे स्मॉल पोर्शन में हाथ में लेकर इसको राउंड में आपको इसके बॉल्स बनाने हैं, है ना, लड्डूस जो है ये आपको अभी बनाने हैं। हाथों को अच्छे से प्रेस करते हुए आप लड्डूस जो है ये बंद होगी, इससे क्या होगा ना कि वो खुलेंगे नहीं। अगर आपको हाथ से लड्डू बनना नहीं आता है तो आप और एक चीज़ कर सकते हो, आजकल मार्केट में लड्डू मेकर भी मिल जाता है, तो लड्डू मेकर आप लेके आना है। जैसे हम मोदक बनाते हैं ना, तो मोदक के लिए जैसे मोल्ड मिलता है, इस तरह से लड्डू के लिए भी आपको मार्केट में आजकल मोल्ड जो है वो मिल जाता है, वो आपको लेके आना है। अभी आपको क्या करना है, उसको अंदर की साइड से अच्छे से घी लगा कर उसे ग्रेसिंग कर लेना है। इससे क्या होगा ना कि जब आप मिश्रण डालोगे तो वो उसके अंदर चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो घी अच्छे से लगा लो ऑल ओवर पूरा अंदर की साइड पे, ठीक है। अभी उसको बंद कर देना है लड्डू मेकर को, और ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन होता है वहां से आपको जो मिश्रण है हमारा, बेसन चीनी ये सब, ये आपको वो मिश्रण को वहां से फील कर देना है। अब उंगली से आपको इसे प्रेस करते जाना है तब तक जब तक कि ये पूरा मोल्ड जो है अच्छी तरीके से फील ना हो जाए, है ना, कहीं पे भी खुली जगह नहीं बचनी चाहिए। इतना मिश्रण आपको इसके अंदर डाल देना है, डालने के बाद में इसे अच्छे से प्रेस करना है, और फिर आपको इसे साइड से ओपन करने के लिए हल्की सी जगह होती है वहां से आपको इसे ओपन कर लेना है, और लड्डू जो है वो आसानी से निकल कर आ जाता है। अगर आपने मोल्ड को ग्रेसिंग नहीं किया है तो लड्डू आपका उसमें से निकलेगा नहीं। सो याद रहे कि आपने ग्रेसिंग करके ही मिश्रण उसके अंदर फिल किया हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से देखो बेसन का लड्डू आप बना सकते हो, हाथ में भी अगर बना रहे हो तो ऊपर से भी आप फ्लेक्स जो है इसे कोट कर सकते हो। लड्डू के मिश्रण को बाहर से घी लगा हुआ होता है, तो आपने ड्राई फ्रूट के फ्लेक्स जो है ये आपने एक प्लेट में ले लेने हैं, और जो लड्डू हमने बांधे हैं आपको इसको इसके अंदर जस्ट रोल करना है, ठीक है। जब आप इसको रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो घी को जो फ्लेक्स है वो चिपक जाएंगे, और दिखने में आपके लड्डू और भी ज्यादा टेम्पटिंग दिखेंगे। तो इस तरह से बेसन लड्डू भी जो है आप बना सकते हो आसानी से, फटाफट से, और घर के ही इंग्रेडिएंट से। तो इस तरह से बेसन के लड्डू जो आपको सिखाए ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम देखते हैं ना कि तो छोटे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है ना, तो हम देखते हैं कि चॉकलेट बर्फी कैसे बनाना है। तो देखो हमने कोकोनट और मिल्क पाउडर से बनी हुई बर्फी देखी जो सभी एजेस में पसंद करते हैं, उसके बाद में बेसन के लड्डूस हमने देख लिए जो सभी लोग खा सकते हैं, है ना, बूढ़े से लेके बच्चे तक। अभी हम देखेंगे चॉकलेट बर्फी, सभी को ही वैसे तो पसंद आती है, बट स्पेशली अगर आपका भाई छोटा हो एज में तो उसे ये बहुत पसंद आएगी। तो चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या लगने वाले हैं ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो इंग्रेडिएंट्स में हमें लगेगा यहाँ पे 2 कप लगेगा हमें यहाँ पे खोया, है ना,
खोया मावा जो आता है मार्केट में मिलता है, दूध से बना हुआ ही लेना है, जो मिलावट वाला है वो आपने नहीं लेना है। ठीक है, 2 कप ले लिया हमने यहाँ पे खोया। उसके बाद में 3/4 कप लगेगी हमें यहाँ पे चीनी। देखो ये जो मेजरमेंट है, आप 3/4 कप की जगह पे 1 कप भी ले सकते हो। ये मिठास आपके ऊपर है, आपको अगर कम ज्यादा, जैसे थोड़ा सा कम स्वीट पसंद है या ज्यादा स्वीट पसंद है, उस हिसाब से आप बस 1/4 कप, इससे ज्यादा नहीं, 1/4 कप मेजरमेंट आप कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद में 2 से 3 टेबलस्पून ले लेना है आपको कोकोआ पाउडर। उसके बाद में 1 टेबलस्पून लगेगा हमें यहाँ पे घी और 1/4 टीस्पून लगेगा हमें यहाँ पे कार्डमम पाउडर। तो देखो प्रिपरेशन जो है, ये सारी सामग्री आपने निकाल के ले लेना है, ताकि आप जब बर्फी बनाने स्टार्ट करो तो आपके लिए आसान हो जाए, सभी इंग्रेडिएंट्स अगर आपको एक जगह पे निकाले हुए मिलते हैं। तो सभी सामग्री हमने ले ली है, अभी हम देखेंगे प्रोसीजर कि आपको चॉकलेट बर्फी इन इंग्रेडिएंट से बनाना कैसी है। तो देखो सबसे पहले खोया जो है इसको हाथ से क्रम्बल कर लो, है ना, यह बंधा हुआ मिलता है मार्केट से जब हम लेके आते हैं, तो हाथ से इसको पूरी तरह से अच्छे से क्रम्बल कर लेना है। ठीक है, अभी आपको एक पैन लेना है, पैन फिर से आपको हैवी बॉटम वाला ही लेना है, ओके, क्योंकि खोया भी जो है ये दूध से बना हुआ होता है तो ये भी चिपकने के चांसेस होते हैं। अगर आप कोटिंग वाले पैन में बनाना चाहो तो बहुत अच्छा होगा कि इसमें खोया जो है ये चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो देखो एक पैन ले लिया हैवी बॉटम वाला, गैस पे आपने सबसे लोवेस्ट फ्लेम पे ही इसको रखना है। अगर हाई फ्लेम पे रखते हो तो मावा जो है ये चिपक जाता है नीचे, सो गैस की फ्लेम जो है सबसे लोवेस्ट पे रहेगी। आपको इसके अंदर खोया और चीनी साथ में ऐड कर देना है, दोनों चीजों को आपको पैन में साथ में ही ऐड करना है और अभी इसको कंटिन्यूस आपको चलाते रहना है। तब तक चलाओगे जब तक कि ये शुगर पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व नहीं हो जाती है। देखो गैस की फ्लेम कम है तो हो सकता है इसको थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि हमें कम गैस पे ही इसे डिसॉल्व करना है, तो 5 से 7 मिनट का टाइमिंग जो है ये लग सकता है, अगर आपने 2 कप खोया और 3/4 कप चीनी ली है तो। अगर आपका मेजरमेंट ज्यादा है तो टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है चीनी मेल्ट होने के लिए। सो देखो सबसे पहले हमने 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया, शुगर कम्प्लीटली हमारी इसके अंदर डिसॉल्व हो चुकी है। अभी हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये जो मिश्रण है ये गाढ़ा नहीं बनने लगता है। जैसे खोया और चीनी जब मेल्ट हो जाती है ना, तो मिश्रण शुरुआत में एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जब वो हम उसको फिर से चलाते रहेंगे, शुगर मेल्ट होने के बाद में भी गैस की फ्लेम कम रखना है और मिश्रण को आपको कंटिन्यूस चलाते रहना है, तो कुछ देर बाद क्या होता है ना कि मिश्रण जो है ये थिकन होने लगता है ना, मिश्रण में गाढ़ापन जो है वो आ जाने लगता है, तो तब तक आपको इसको चलाते रहना है। ठीक है, मिश्रण जब थिक हो जाए और वो पैन को छोड़ने लग जाए, जब खोया अच्छी तरीके से भून जाता है और चीनी भी उसके अंदर से मेल्ट होकर ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, तो मिश्रण जो है ये मिल के आ जाता है पूरी तरह से, और ठीक होने के साथ साथ वो पैन जो है वो छोड़ने लगता है। तो जैसे ही मिश्रण पैन छोड़ दे तो आपको गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, अभी आपने ये मिश्रण को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, एक आधा मिश्रण एक बाउल में ले लोगे और आधा मिश्रण एक अलग से बाउल में आपको ले लेना है। अभी आपने क्या करना है, एक जो पार्ट है उसमें हमें डालना है कार्डमम पाउडर, ये डालकर आपको इसे अच्छे से मिक्स दे देना है, और सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपको डालना है यहाँ पे कोकोआ पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून। थोड़ा सा ज्यादा चॉकलेटी पसंद करते हो तो 3 टेबलस्पून डालिए, नॉर्मल डालना है तो 2 टेबलस्पून भी सफिशियंट है। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। देखो कोकोआ पाउडर भी जब डालते हो ना तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको ऐड करना है, इससे भी लम्स बन सकते हैं आपके मिश्रण में। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे और आपका मिश्रण अच्छे से ब्राउन कलर का होने लगेगा।
याद रहे कार्डमम पाउडर भी और कोकोआ पाउडर भी तभी ऐड करना है जब आपका मिश्रण गर्म है। हाँ, ठंडा होने के बाद में वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो गर्म रहते हुए ही आपको ये दोनों भी चीज़ें जो है ये आपको अच्छे से ऐड कर देनी है। अभी आपको क्या करना है, एक प्लेट ले लेना है। अगर आपके पास में स्क्वायर वाला ट्रे है तो वो भी ले सकते हो, या तो फिर कोई राउंड वाली प्लेट जो भी है आपके पास में, स्टील वाला या फिर ग्लास वाला, जो भी अवेलेबल है। ग्लास वाला अगर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो माइक्रोवेव सेफ हो, है ना, ताकि जब आप उसमें गर्म मिश्रण डाले तो वो ब्रेक ना हो। अभी जो भी प्लेट आपने ली है स्टील की या जो भी आपके पास है, इसे आपने घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर देना है। ठीक है, ग्रीस करने के बाद में सबसे पहले हमने जो हमारा मिश्रण था जिसमें हमने कार्डमम पाउडर यूज डाल

0: चॉकलेट का मिश्रण जो है ये आपको इसके ऊपर पूरी तरह से डाल देना है और इसे भी आपको टैप टैप करते हुए प्लेन कर देना है। तो इस तरह से दो लेयर में हमारा जो मिश्रण है ये चला गया है, एक लेयर जो प्लेन वाली थी और सेकंड जिसमें हमने चॉकलेट का मिश्रण बनाया था कोकोआ पाउडर डालकर। अभी आप और एक चीज कर सकते हो उसके अंदर कि आप इसे तीन लेयर में बना सकते हो। जैसे आपने प्लेट को ग्रीसिंग कर ली तो जो प्लेन वाला मिश्रण है वो आपने पहले डाला जिसमें कोई कलर नहीं है, उसके बाद में हमने कलर तो यूज नहीं किया है, कोकोआ पाउडर डालकर हमने उसे ब्राउन किया है। इसके बाद में जो हमारा ब्राउन वाला मिश्रण है वो हमने यहाँ पे ऐड करा और इसे भी टैप करते हुए हमने फ्लैटन कर लिया है। अब इसके बाद में जो प्लेन वाला मिश्रण है आप फिर से इसके ऊपर डाल सकते हो, मतलब तीन लेयर्स में आपका जो है वो बर्फी जो है वो दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो या तो फिर दो लेयर में भी कर सकते हो। मिश्रण जैसे डाल दिया पूरा इवनली स्प्रेड कर दिया, टैप करके आपने इसको पूरा प्लेन कर दिया। अभी आपको क्या करना है, इसे कम्प्लीटली कूल करना है आधे घंटे तक। ठीक है, आधे घंटे के बाद थोड़ा सा कूल हो जाएगा, उसके बाद में आपको इसकी बर्फी जो है ये गिरा लेनी है। आप इसे नाइफ की सहायता से भी कर सकते हो या तो फिर आप जो पिज्जा कटर होता है उससे भी आप इसको बर्फी जो है वो बना सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको पूरी तरह से एक घंटे तक ठंडा होने देना है और जो बर्फी है वो आपको इसके बाद में निकाल लेनी है। ओके, अनमोल्ड करते समय याद रहे कि बर्फी जो है वो आपकी टूटे ना, इसके लिए आप स्पैचुला का यूज करो निकालने के लिए। आप इसे किसी भी कांच की बर्नी में या एयर टाइट डिब्बे में भरकर कम से कम 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पर, कोई खराब नहीं होगा। इसमें मावा रहने के बाद में भी ये भुना हुआ है, अगर आप इसे प्रॉपरली स्टोर करते हो तो ये अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर पर 15 दिन तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से चॉकलेट बर्फी भी आप बना सकते हो। तो सारी रेसिपीज जो है वो इस रक्षाबंधन पर आप जरूर ट्राई कीजिएगा और आपकी रेसिपीज कैसी बन रही है ये हमें जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून विद MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: आपल्या बिझनेस ची सुरुवात झाली आहे पण बिझनेस बद्दल लोकांना माहितच नाहीये, तर चिंता नसावी,
2: बिझनेस तुमचा ऍडव्हर्टाइजमेंट आमची।
1: तुमच्या बिझनेस ची ऍडव्हर्टाइजमेंट करा MGM 90.8 FM वर एकदम वाजवी दरात।
2: कॉन्टॅक्ट फॉर ऍडव्हर्टाइजमेंट 9422519189 और 9518315455।
3: हे बाकी सब ठीक,
4: बस चल रहा है।
3: बाकी सब ठीक,
4: बस चल रहा है।
3: बाकी सब ठीक है ना?
4: बस चल रहा है भाई।
3: What about you?
4: हाँ चल रहा है।
3: बाकी सब ठीक,
4: बस चल रहा है।
3: बाकी सब ठीक,
4: बस चल रहा है।
3: बाकी सब ठीक है ना?
4: हाँ ठीक है।
3: और तेरा?

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू? हाय,

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: नगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

ए बिच्छू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: NGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज रेडी टू हेल्प यू मेक योर करियर इन होटल मैनेजमेंट, एविएशन, कलिनरी आर्ट्स, बेकरी एंड इवेंट मैनेजमेंट। जॉइन MGM यूनिवर्सिटी IHM। फॉर एडमिशन कॉन्टेक्ट नाउ एट 8793047544 और विजिट mgmu.ac.in।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: क्या आप जानते हो रंग दे बसंती का मतलब क्या होता है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था रंग दे बसंती। इसमें जो लफ्ज है बसंत, बसंत यानी के पीले रंग को कहा जाता है और पीला रंग ये प्रतीक है बलिदान, वीरता और देश प्रेम का। और इसी गीत को भगत सिंह ने भी गाया था।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे।
1: कुछ तो बात है इस रंग में जो कि हर किसी को देशभक्ति के रंग में रंग देता है। वैसे आप जानते हो ये देशभक्ति का रंग कैसे बनता है? और इस रेसिपी में क्या क्या मिलाना पड़ता है ये लाइन सुनिए।
2: थोड़ी सी धोखने वाली दग दग दग दग दग दग सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की।
1: अब आगे क्या करना है?
2: ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले।
1: और इससे जो रंग बनेगा उससे
0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, NH5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू

एक रिमाइंडर दे दूं आपको, गौर से सुनिएगा। So, बात कुछ ऐसी है कि हेलमेट पहना आपने, अब आप पूछ रहे हो या ऐसा क्यों पूछ रहा है हेलमेट पहना है क्या है, हर दिन थोड़ी ना मैं हेलमेट पहनता हूँ। तो भाई साहब, बहन जी, दादाजी, दादी जी, आंटी जी, काका जी, काकू जी, सभी को मैं कह रहा हूँ, और भैया जी आपको भी कह रहा हूँ, और जो आपकी हेयर स्टाइल खराब होने वाली है ना, तो उसको भी मैं कह रहा हूँ कि हेलमेट यूज कीजिएगा। ऐसा मैं नहीं, खुद पुलिस प्रशासन कह रहा है, कारण कि पुलिस प्रशासन ने हेलमेट स्वीकृति ही मुहिम शुरू के लिए लिया है। काल पासून म्हणजे 1 सप्टेंबर पासून या मोहिमेचा श्री गणेशा झालेला आहे। तर या मोहिमे अंतर्गत शहरात सगळीकडे हेल्मेट कंपल्सरी झालेला आहे, आणि जे हेल्मेट यूज करणार नाहीयेत त्यांच्यावर कारवाई सुद्धा होणार आहे, मतलब फाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हेल्मेट पहनना जरूरी है। सध्या कसे आता सण उत्सव सुरू होत आहे, दहीहंडी आहे, त्यानंतर गणपती उत्सव सुरू होणार आहे, मग नवरात्री। सो इन त्योहारों में हम सभी ने त्योहार भी सेलिब्रेट करना और खुद का ख्याल भी रखना, ध्यान भी रखना और हेल्मेट स्वीकृति करना, इसीलिए ये नया उपक्रम शुरू कर दिया गया है। आणि या पाठीमागे कारण हे पण आहे की जे ऍक्सिडेंट होतात ना, त्यातील 70% जास्त ऍक्सिडेंट मध्ये हेल्मेट न वापरलेले केसेस जास्त आहेत। हेल्मेट वापरले असते तर लोकांचा मृत्यू झाला नसता। या मोहिमेचा हिस्सा तुम्ही सुद्धा व्हा, आणि सकाळी 10 ते दुपारी 1 आणि संध्याकाळी 4:30 ते 8 या वेळेत ना वाहतूक पोलिसांचे 7 पेक्षा अधिक पथक विदाऊट हेल्मेट जे गाडी चालवत आहेत, टू व्हीलर, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील। सो यूज हेल्मेट, इससे फायदा हमारा ही होगा, ना कि प्रशासन का। हेलमेट हम यूज करेंगे, हमारी जिंदगी बचेगी। एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

अक्सर कहते हैं कि एम्बुलेंस कभी वक्त पर नहीं पहुंचती, और ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमारे सामने है। एंड जब एक्सीडेंट होता है तो वक्त पर एम्बुलेंस ना पहुंचने की वजह से तो बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो अब एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को लेकर NHAI ने सख्त रूल लागू किए हैं, जिसको फॉलो करना कंपलसरी हो चुका है हर एम्बुलेंस ड्राइवर को और उस पर काम करने वाले लोगों को। नए रूल्स के हिसाब से क्या है कि अगर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के एरिया में एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी कॉल रिसीव होने के 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस को एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचना कंपलसरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचती तो ऑपरेटर पर 10,000 का फाइन भी लग सकता है, और 10 मिनट के बाद हर एडिशनल मिनट पर 5,000 की पेनल्टी भी उन्हें लग सकती है। मतलब 10 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो 11वें मिनट पर 5,000 एक्स्ट्रा पेनल्टी उन्हें लग सकती है। ऐसे इस रूल्स और रेगुलेशन में लिखा गया है, जो कि नए तरीके से अभी लागू कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस को इंजर्ड पर्सन को कॉल रिसीव होने के 1 घंटे के अंदर नजदीकी हॉस्पिटल तक ले जाना है। इसमें भी अगर डिले हुआ तो 10,000 का फाइन लग सकता है। देखिए, एक्सीडेंट के बाद ना हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी वही एक मिनट किसी की जिंदगी और मौत के बीच का एक डिफरेंस बन सकता है। इसलिए अगर आप गाड़ी हाईवे पर चला रहे हो या फिर किसी नॉर्मल रास्तों पर, स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिएगा। और अगर एक्सीडेंट दिखा तो सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में मत बैठिए, मदद के लिए इमरजेंसी सर्विस को कॉल कीजिए। और ये अभी ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन NHAI ने सभी हाईवे पर जितने एम्बुलेंस है ना तो उनको लागू किए है, तो इसको भी याद रखिएगा। एंड 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचेगी, यही अभी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाती है खाने की, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में टाइम लगता है। शायद से ऐसे रूल्स और रेगुलेशन से होप सो ये डिफरेंस खत्म हो जाए। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है, गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, आराम से चलाइए, क्योंकि जान है तो जहान है मेरी जान। बाकी तो RJ अदनान के साथ अभी शो बहुत बाकी है, सुनते रहिए। Only on MGM 90.8.

0: प्रेम के
1: मैं कोई रोगी अजब तेरी बात सुनती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात।
0: अरे वम वम वम ऐसा कैसा होगा तोबा काहे को करता तोबा काहे को करता प्यार से डरता ऐसा रिश्ता नम कैसा होगा।
1: अरे नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन नन

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तन्हाई

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें,